0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

समझ के थे मैं लिख लाएदा मेरी माँ ने मेनू दसिया पुत ये गल ऐदा ते बापू ने पढ़ाया सच्चे आला कहदा ते बापू ने पढ़ाया सच्चे।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरबरम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111। तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477023 6 2 7 2 V23 license number 1039 4।
1: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
2: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, तां कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

अपने आप को चेक करवा लीजिए, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोजी एंड विलियम्स पार्क में, मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5090 पर कॉल कीजिए। 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: राजा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
0: राजा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
2: श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति

ॐ अथ श्री विजितवीर हनुमन माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्री विचित्रवीर हनुमन माला मंत्रस्य श्री रामचंद्रो भगवान ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्रवीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थी तारा मंत्र जपे विनियोगः अथ करन्यासः। ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः। ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रह कर कर कर्भिष्टाभ्याम नमः तद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसि स्वाहा। ओम रौं शिखायै वषट। ओम रीम कवचाय हुम। ओम रौं नेत्रत्रयाय वषट।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिलीज के साथ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज अब आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अब इस महीने गुरु पूर्णिमा है महीने के आखिर में, तो आप सभी को फिर उसके बाद राखी का त्यौहार आने वाला है, तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिविक हॉलीडे अगस्त 1 को आएगी, तो बस लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सितंबर में भी आएगा लॉन्ग वीकेंड, अक्टूबर में भी आएगा। तो बाकी अपने आप भी कई लोग अब आजकल घर से ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग कोविड के बाद भी, तो अभी जो घर से काम करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत टाइम का घर पे रहने का मिल ही जाता है। तो आइए अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, डिजिटल बारबेक्यूज, लेटेस्ट डिजाइन का टीवी लेना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत ही सस्ते रेट में, अब गर्मियां हैं तो बहुत सारे लोग घर चेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और आपको सारा कुछ खरीदना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी समर स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी एक लोकेशन आपके लिए इंटरमॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है किचन और वाटर लुक ग्वाल्फ में, आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260। और आपने फिर घर खरीद लिया तो फिर मूव भी होना होगा, तो अगर मूव होना है तो आप मूविंग के लिए HK मूवर्स को कॉल कीजिए, उनकी बहुत सारी टीम्स है कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, 416-524-4164-526-7704 पे आप उनको HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन में आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिफेंडर गौर रोड पे मौजूद है, तो आप किसी किस्म का भी आपको आपने कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिपो .com पर जाइए, तो और उनकी जानकारी लीजिए और फिर आप उनको कॉल कर लीजिए। हर तरह के इंश्योरेंस के लिए आपके जैसे कि बीमा के भी आपको क्लेम है, किसी तरह का भी, वो भी उसके लिए आपका पूरी मदद करेंगे, और हर तरह के वो क्लेम आपको मास्टर कलिजन डिपो अब लंदन में आपके लिए मौजूद है, तो आप लंदन में आप रहते हो जहाँ आसपास के इलाके में रहते हैं तो कलिजन का काम आपका बहुत बढ़िया करके देंगे। तो आइए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी की फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की गुड्डी, उसी का फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं। लेट्स गो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। रफी साहब क्या बात है, कमाल है।

अजवीन पुलिया पहला फूले कमल अजवीन पुलिया तुझे फूले के दिल तेरे उत्ते डुलिया साडे हिंदू लेके काटे हो साडे हिंदू लेके काटे दिलानू मिला गए आरती तू लेके किन सोने सोने खाने दूर जाने जाने मेरे मेरे आगे मार दे तू लेके।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपका ही प्रोग्राम है, आपकी ही पसंद के गाने हैं। तो जिन लोगों ने ये गाने पसंद किए थे उनको हम प्ले कर रहे हैं, मैसेज भेजा था। तो अब आपने भी अगर कोई गाना सुनना है अगले प्रोग्राम में तो आप आज ही हमें मैसेज आप हमें मैसेज भेज सकते हो, और फिर हम आपका भी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। तो एक फिल्म थी पुरानी, वो 1959 में आई थी, भंगड़ा, पंजाबी फिल्म। तो उन दिनों में क्या होता था कि ये जो पंजाबी फिल्में थी, ये जो वहाँ अलग अलग शहरों में गांव में वो किसी जो जैसे बहुत सारे चराहे उनको चराहे बोलते थे, तो वहाँ पे जो बने हुए होते थे, वहाँ पे छड़े बने हुए होते थे, वहाँ पे वो स्क्रीन लगा के लोगों को फ्री ऐसी पंजाबी की मूवियाँ दिखाते थे। तो बहुत बार ये जो भंगड़ा फिल्म थी, ये बहुत सारे गांवों में शहरों में ऐसे दिखाई गई थी, मुझे याद है। तो ये चौक बोलते हैं ना उनको, तो चौक अलग अलग जगह पे बने हुए होते हैं, पर फिर उनको देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, तो वहीं पे वो कुर्सियाँ लगा देते थे लोगों के बैठने के लिए शाम को। आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे बाहर आपको याद होगा उन दिनों में ऐसे दिखाते थे शहरों में। और फिर स्कूल में भी कई अच्छी फिल्में आती थी, जैसे संत ज्ञानेश्वर थे, अनपढ़ थी, तो वो फिल्में दिखाई गई थी स्कूल की तरफ से। तो मेरे फुफ्फड़ जी क्या थे कि वहाँ सिनेमा में ऑपरेटर थे वो, तो वो सारा फिल्म चलाने का वही काम करते थे हमारे बंगा शहर में। तो फिर मेरी बुआ जो थे, मेरा स्कूल पास ही था वहाँ पे, तो मेरी बुआ जो था वो वहाँ पे लेडीज शो होता था ना, मैटनी शो। तो फिर वो मुझे वहाँ से स्कूल से ले जाके, तो अपने साथ ले जाके खिला पिला के वहाँ पे कुलचे वगैरह तो छोले वगैरह, तो फिर मूवी अंदर दिखाने ले जाते थे। तो पीछे पहले दिखाते थे कि मेरे फुफ्फड़ जी कहाँ पे वो काम करते थे अंदर, कैसे वो फिल्म चलाते थे वहाँ से, तो फिर सारे वो थिएटर में जाती थी। तो ये बचपन की यादें हैं, बहुत प्यारी सी यादें हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप जाइएगा, जी हाँ, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनकी समर सेल का फ़ायदा उठाइए। उन्होंने बहुत बढ़िया सेल लगा रखी है आपके लिए, और आप उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में भी है। आपने घर खरीदा है, आपको जब बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया सा चाहिए, आउटडोर का बारबेक्यू चाहिए, आजकल बड़े डिजिटल वगैरह आ गए हैं, किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट एडवांस स्मार्ट वंस, तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए। और आपने छोटी सी किचनेट सेट करवानी है तो वो भी आपके लिए कर देंगे। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लीजिए, उनके अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-00-4579-799-00-45। और अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, लंदन के

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये, जी हाँ, तो ये जो सिंगल्स थी ना उस जमाने में, तो क्या होता था कि उस जमाने में लड़कियों को इतना म्यूजिक मूवी ये सब कुछ इतना ज्यादा इजाजत नहीं था। तो हम इन लेडीज के लिए आगे आने के लिए और इस तरह से अपने आप को मूवीज में अपने आप को डेवलप करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे लिए गाकर गए हैं उनके, उसके लिए उनको सलाम करते हैं, सर नवाते हैं और उनकी कदर करते हैं, क्योंकि कमाल की उनकी गायकी थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी उस जमाने में अपने आप को आगे लाने के लिए, हिम्मत भी थी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे था कि 70s के जमाने में काफ़ी ज़्यादा लेडीज बहुत ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम में ज़्यादा नहीं आ सकती थी, तो इसलिए बहुत कम लेडीज थी। अब तो काफ़ी सारी लेडीज हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में हैं और बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि उनको आजकल जो मीडिया है बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत एडवांस्ड हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं किसी और स्टेशन पे अगर हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज है इंडस्ट्री की, तो वो सारी नॉलेज भी शेयर करते हैं, तो उनको उनको भी हम सलाम करते हैं। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया उन्होंने ज़िंदगी में और एक प्रोफेशन उन्होंने बना लिया इसको और प्रोफेशनल ढंग से सारा करते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी दैट। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। ये जो बत्ती बाल के बनेरे उठते रख दिया ओल्ड सॉन्ग, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: वाली फूल लगा आएनी बत्ती बाल के बने रे उठे रखनिया।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आपको आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं तो
2: Make so much more than money when you earn Scene Plus points with Scope.

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छा हो। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो अभी क्या है कि बच्चे लोग छुट्टियों पे हैं, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, सेफ अपने आप को भी सेफ रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिएगा। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा भला है वंडरफुल।
1: सीमा रोके नहीं बनी उसके लिए सब को दबाना न हो।

0: आज थाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम तां अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।

आपको चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आपको को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1990 पर कॉल कीजिए 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

सबोई पुष्ट चाहे सके न कोई एक बार जिन तुमने सहारा काल पास देता है तुम्हारा जिन्हें नाम के मारो पार भी दुष्टि तोड़ देगा चढ़ के तुम्हें शरण तिहारी आप बात देने हो सर्व तोर मोहा सारा

0: राजा मालवा द्वापर वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
0: राजा मालवा द्वापर वेडिंग स्टोर।
2: श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति

सायम अथ श्री कुलदेवी की स्तोत्रम ओम नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री मार्गन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरं ग्राही मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता ग्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्मत्सलोऽहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या ग्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम्।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिलीज के साथ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज अब आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अब इस महीने गुरु पूर्णिमा है महीने के आखिर में, तो आप सभी को फिर उसके बाद राखी का त्यौहार आने वाला है, तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिविक हॉलीडे अगस्त 1 को आएगी, तो बस लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सितंबर में भी आएगा लॉन्ग वीकेंड, अक्टूबर में भी आएगा। तो बाकी अपने आप भी कई लोग अब आजकल घर से ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग कोविड के बाद भी, तो अभी जो घर से काम करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत टाइम का घर पे रहने का मिल ही जाता है। तो आइए अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, डिजिटल बारबेक्यूज, लेटेस्ट डिजाइन का टीवी लेना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत ही सस्ते रेट में, अब गर्मियां हैं तो बहुत सारे लोग घर चेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और आपको सारा कुछ खरीदना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी समर स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी एक लोकेशन आपके लिए इंटरमॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है किचन और वाटर लूप ग्वाल्फ में, आप नसीब चंद को कॉल कीजिए 519-546-1260, 519-546-1260। और आपने फिर घर खरीद लिया तो फिर मूव भी होना होगा, तो अगर मूव होना है तो आप मूविंग के लिए HK मूवर्स को कॉल कीजिए, उनकी बहुत सारी टीम्स है कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, 416-524-7604 पे आप उनको HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन में आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिफेंडर गोर रोड पे मौजूद है, तो आप किसी किस्म का भी आपको आपने कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन .com पर जाइए, तो और उनकी जानकारी लीजिए और फिर आप उनको कॉल कर लीजिए। हर तरह के इंश्योरेंस क्लेम आपके जैसे कि बीमा के भी आपको क्लेम है किसी तरह का भी, वो भी उसके लिए आपका पूरी मदद करेंगे, और हर तरह के वो क्लेम आपको मास्टर कलिजन डिपो अब लंदन में आपके लिए मौजूद है, तो आप लंदन में आप रहते हो जहाँ आसपास के इलाके में रहते हैं तो कलिजन का काम आपका बहुत बढ़िया करके देंगे। तो आइए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी की फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की गुड्डी, उसी का फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं। लेट्स गो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। रफी साहब क्या बात है, कमाल है।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपका ही प्रोग्राम है, आपके ही पसंद के गाने हैं। तो जिन लोगों ने ये गाने पसंद किए थे उनको हम प्ले कर रहे हैं, मैसेज भेजा था। तो अब आपने भी अगर कोई गाना सुनना है अगले प्रोग्राम में तो आप आज ही हमें मैसेज आप हमें मैसेज भेज सकते हो, और फिर हम आपका भी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। तो एक फिल्म थी पुरानी, वो 1959 में आई थी, भंगड़ा, पंजाबी फिल्म। तो उन दिनों में क्या होता था कि ये जो पंजाबी फिल्में थी, ये जो वहाँ अलग अलग शहरों में गांव में वो किसी जो जैसे बहुत सारे चराहे उनको चराहे बोलते थे, तो वहाँ पे जो बने हुए होते थे, वहाँ पे छड़े बने हुए होते थे, वहाँ पे वो स्क्रीन लगा के लोगों को फ्री ऐसी पंजाबी की मूवियाँ दिखाते थे। तो बहुत बार ये जो भंगड़ा फिल्म थी, ये बहुत सारे गांवों में शहरों में ऐसे दिखाई गई थी, मुझे याद है। तो ये चौक बोलते हैं ना उनको, तो चौक अलग अलग जगह पे बने हुए होते हैं, पर फिर उनको देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, तो वहीं पे वो कुर्सियाँ लगा देते थे लोगों के बैठने के लिए शाम को। आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे बाहर आपको याद होगा उन दिनों में ऐसे दिखाते थे शहरों में। और फिर स्कूल में भी गई अच्छी फिल्में आती थी, जैसे संत ज्ञानेश्वर थे, अनपढ़ थी, तो वो फिल्में दिखाई गई थी स्कूल की तरफ से। तो मेरे फुफड़ जी क्या थे कि वहाँ सिनेमा में ऑपरेटर थे वो, तो वो सारा फिल्म चलाने का वही काम करते थे हमारे बंगा शहर में। तो फिर मेरी बुआ जो थे, मेरा स्कूल पास ही था वहाँ पे, तो मेरी बुआ जो था वो वहाँ पे लेडीज शो होता था ना, मैटनी शो। तो फिर वो मुझे वहाँ से स्कूल से ले जाके, तो अपने साथ ले जाके खिला पिला के वहाँ पे कुलचे वगैरह तो छोले वगैरह, तो फिर मूवी अंदर दिखाने ले जाते थे। तो पीछे पहले दिखाते थे कि मेरे फुफड़ जी कहाँ पे वो काम करते थे अंदर, कैसे वो फिल्म चलाते थे वहाँ से, तो फिर सारे वो थिएटर में जाती थी। तो ये बचपन की यादें हैं, बहुत प्यारी सी यादें हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप जाइएगा, जी हाँ, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनकी समर सेल का फ़ायदा उठाइए। उन्होंने बहुत बढ़िया सेल लगा रखी है आपके लिए, और आप उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में भी है। आपने घर खरीदा है, आपको जब बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया सा चाहिए, आउटडोर का बारबेक्यू चाहिए, आजकल बड़े डिजिटल वगैरह आ गए हैं, किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट एडवांस स्मार्ट वंस, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। और आपने छोटी सी किचनेट सेट करवानी है तो वो भी आपके लिए कर देंगे। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लीजिए, उनके अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-00-4579-799-00-45। और अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, लंदन के आसपास आप रहते हैं तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर जानकारी लीजिए और उनको कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, बहुत सालों का उनका तजर्बा है।
तो अगर आपने वेज नॉन वेज खाना ऑर्डर करना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू मौजूद है। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 905-814-1730 5 8 1 4 1 7 3 0 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये गीत सुनाती हूँ 1959 की फिल्म भंगड़ा से। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये, जी हाँ, तो ये जो सिंगल्स थी ना उस जमाने में, तो क्या होता था कि उस जमाने में लड़कियों को इतना म्यूजिक मूवी ये सब कुछ इतना ज्यादा इजाजत नहीं था। तो हम इन लेडीज के लिए आगे आने के लिए और इस तरह से अपने आपको मूवीज में अपने आप को डेवलप करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे लिए गाकर गए हैं उनके, उसके लिए उनको सलाम करते हैं, सर नवाते हैं और उनकी कदर करते हैं, क्योंकि कमाल की उनकी गायकी थी और उन्होंने काफी मेहनत करी उस जमाने में अपने आप को आगे लाने के लिए, हिम्मत भी की, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे था कि 70s के जमाने में कोई इतनी ज्यादा लेडीज जो थी ना, ये बहुत ज्यादा रेडियो प्रोग्राम में ज्यादा नहीं आ सकते थे।

बना लिया इसको और प्रोफेशनल ढंग से सारा करते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी दैट। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। ये जो बत्ती बाल के बनेरे होते रख दिया ओल्ड सॉन्ग, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आपको आप अगर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं तो
1: Make so much more than money when you earn Scene Plus points with Scope.

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छा हो। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो अभी क्या है कि बच्चे लोग छुट्टियों पे हैं, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, सेफ अपने आप को भी सेफ रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिएगा। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी स्वादा भला है वंडरफुल।
1: सीमा के नहीं यूज़ के लिए सब को दबाना ना।

सहज मिला मिलिया परवाना, नात स्मरणा न आवण जाना। ठाकुर महदास दास महसूस

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कितनी बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32 55 80 98।
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते,
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905 450 2828 905 450 2828।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं ये चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

वेल, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609। With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.